0: लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी मौरी घाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रालय र प्रदेश सभा भवन जाने बाटो लिएर सम्पर्क नम्बर 98578-22275।
1: प्रकाशक तथा व्यवस्थापक मानसिंह विश्वकर्मा, रोल्पा समाचार साप्ताहिक एवं रोल्पा अफसेट प्रेस।

0: भर्ती तथा विदेश जानेहरूका लागि विशेष खालको दाँत भरिने।
1: थप जानकारीका लागि B&B डेन्टल क्लिनिक घोराई 15 हस्पिटल रोड निमा हल कुमारी बैंक अगाडि दाङ शाखा नारायणपुर बुधौरा चोक। सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 082-590-350 र मोबाइल नम्बर 98-578-43-122 र 98-578-43-123।
0: B&B डेन्टल क्लिनिक घोराही 15 दाङ।
2: मेरो लागि मायुका लागि सुनसरी गाउँपालिका योनि मस्तक जरुरी सूचना। जो बेला खेमरिदे गरम ओबोदिरी जेउ बेला सुनो भुरी कता ओचुदिरी जेउ आउ बेला क वन जंगल ल मे लागिने मस्तक सम्भावना चाहिए। आउ ये जिमे प्राकृतिक सम्पदा र सक्षेप्त जसक्षम नारी वातावरण मिलेने लघ्यता असर किएने रि उमूल र थाउने भुछे ताने वायुमण्डल ल कार्बन मस्तक तानाले भने जलवायु परिवर्तन ल असर सकिने सुनो नाखार नामे ल मे लागिने सज जिमी जिमी लापरवाही सुनो चाउसो खेलगेमा धुप जिमगे कोठेल मेला कि नाते जन धने मे खेता छिपी ताउर हो खोकाई
3: गेचो छानियाला बल्ल मेला कि पुर रहँदै नौ पुराले चौसो खेल गिरे
2: वन जङ्गल सज मिरा आइरी बानी एमएल एमए ओसो छानियाला लिउ सोतर पोतराले पार बजे रहतै
3: सलाई लाइटर सियाउला मे सचाउने चिजराले जा बाङजा र यामा देने पोल गेने या इतौ चिज र रहिदे वन जङ्गल याल के भबा या
2: पिकनिक वन भोज बाको मे सचाउसो छिनी मेले चौसो सैदे कि खेनाले वन जङ्गल ओसो छानि दै के बारी को चुरोद विधि ओरे बनै को
3: नान्थर नाम लिजौ वन उपभोक्ता समूह राई सामग्री हाल्ने छ अनुगमन दिने व्यवस्था चौसो गिरिए
2: गेसो छानेला खोरेल चाउसी बोलिए होइदिदे तरी गाइकी मेके लैजु अब नैदे बनाइ गेम यल गे जम नेके नालाए ओडेम नायो के नाइए
3: वन जंगल स जुडिसि गेम बारी ल बाली नाली कुचुला चुली यात्रा चौसो छिनी ने चौसो सैले के खेले या
2: वन जंगल मेला कि गेमाइए मे होला दिकिनी पातोना खरनाम नारे दिदे बने
3: बतास उचलिजु बेलाको हिजिमके कोटल मेके सताङ्गिने हेनोखेम छिन्ने मे चासो के सया
2: मे लागिने निताई गे मने गे बचिए सुनो अरूले मने गे बचया
3: के छो थामला पोयाल मे लागि गे सन्किने गे छोटा ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सज सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका उनी कार्यालय खबर गिरिए
2: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा।

0: स्किन केयर सेन्टर सुपरिजित फार्मेसी ट्राफिक चोक देखि 100 मिटर पश्चिम उकालो तर्फ घोरा हिदाङ। थप जानकारी का लागि सम्पर्क नम्बर 082-591-670 98-578-43123 98-478-070
1: बाथ रोग एंड स्किन केयर सेंटर प्राली ट्राफिक चौक देखी 100 मीटर पश्चिम उकालो तर्फ घोराही दाङ।

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन गंगा।